श्री मलिक ने गाई ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब संत मुक्ताबाई रचित एक पारंपरिक गौरण सुनते हैं।

अभी आपने संत मुक्ताबाई ने रची एक पारंपरिक गवर्ण सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं तुकाराम महाराज ने रची ये भक्ति रचना, जिसे गाया है राजा काटे ने।

राजा काटे के स्वर में संत तुकाराम महाराज ने रची भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली देशभक्ति पर रचना समूह स्वर में सुनते हैं, जिसके रचयिता हैं एन के बेहरे।

अभी आपने समूह स्वर में ये देशभक्ति पर रचना सुनी जिसके रचयिता थे एन के बेहरे। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मालती पांडे के स्वर में संत जनाबाई की ये भक्ति रचना। संगीतकार हैं दादा चांदेकर।

संत जनाबाई की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी मालती पांडे के स्वर में। संगीतकार थे दादा चांदेकर। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं डॉक्टर वसंतराव देशपांडे के स्वर में संत निवृत्तिनाथ की ये भक्ति रचना।

अभी आपने संत निवृत्तिनाथ की भक्ति रचना सुनी डॉक्टर वसंतराव देशपांडे के स्वर में। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना आइए सुनते हैं विदुषी माणिक वर्मा के स्वर में। रचनाकार हैं बाभ बोरकर।

बाबा बोरकर ने रची ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी विदुषी माणिक वर्मा के स्वर में। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं इंद्रजीत पवार के स्वर में संत एकनाथ महाराज की ये भक्ति रचना।

0: उमा हिमगिरि कुमारी रंगेश विठल रचने
1: नौ लेटस्ट लिसन टू अ कंपोजिशन ऑफ रंगेश विठल उमा हिमगिरि कुमारी।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग अहीर भैरव में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं संघमित्रा कर. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित सुजीत साहा और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रतन नट्टो.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. This morning, we first present a Hindustani vocal performance. Listen to a khayal recital in Rag Ahir Bhairav. Our artist this morning, Shongomitra Kaur. The accompanying artists are Pandit Shujit Shaha on the tabla and Ratan Notto on the harmonium.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहीर भैरव में ख्याल सुन रहे थे। आज की कलाकार थी संगमित्रा कर। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित सुजीत साहा और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रतन नट्टो। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आइए सुनते हैं राग मियां की तोड़ी में सितार वादन। आज के कलाकार हैं राहुल चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय।
1: यू आर लिसनिंग टू अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल, अ ख्याल परफॉर्मेंस इन राग आहिर भैरव। आवर आर्टिस्ट वॉज संगमित्र कौर। Accompanying the artist was Pandit Sujit Saha on the tabla and Rotan Natto on the harmonium. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing our morning concert, now listen to a Hindustani sitar recital by our next artist Rahul Chattopadhyay. Rag Miyan Ki Todi. The accompanying artist is Torun Roy on the tabla. सितार रिसाइटल इन राग मियां की तोड़ी।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग मिया की तोड़ी में सितार वादन सुन रहे थे। आज एक कलाकार थे राहुल चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 2400 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: सुनिए विदुषी शोभा गुर्टू का उपशास्त्रीय गायन प्रस्तुत है ठुमरी बोल है साजन मेरा छोड़ गया तबले पर संगत किया है महादेव इंदोरकर ने सारंगी पर जेपी खान और हारमोनियम पर बाबूराव नेजकर
2: Listen to Hindustani light classical vocal by Vidushi Shobha Gurtu. First, we will listen to Thumri. Bol, Sajan Mera Chhod Gaya. Accompanying her on tabla is Mahadev Indorkar. On sarangi, J.P. Khan. And on harmonium, Baburao Neskar.

0: अभी आप सुन रहे थे विदुषी शोभा गुर्टू की गाई ठुमरी। अब सुनते हैं माज खमाज ठुमरी, बोल हैं अब कैसे धरूं धीर।
1: Now we will listen to मांझ खमाज ठुमरी, बोल अब कैसे धरूं धीर।

0: अब सुनिए विदुषी शोभा गुर्टू का गाया दादरा। बोल है बिंदिया ले गई हमार मछलिया।
1: दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल बाय विदुषी शोभा गुर्टू। Accompanying her on tabla was D.R. Nerurkar. On sarangi was Anant Kunte and on harmonium was Arvind Tsafalkar. Continuing with the concert, listen to Vidushi Shobha Gurtu presenting Dadra. Bol, Bindiya le gai hamar machliya.

ये था दादरा। विदुषी शोभा गुर्टू की गाई भैरवी ठोबरी सुनिए। बोल हैं बहुत दिन बीते सैया नहीं आए।

ये आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी। ये रागम डीटीएच चैनल है, सुनते रहिए हर दिन हर पल भारतीय संगीत।

0: This is Agam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए विदुषी सुमित्रा गुहा का गाया राग कलावती। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं श्याम नाही घर आए, और द्रुत ख्याल एक ताल में निबद्ध, बोल हैं कान्हा रे गिरधारी। तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चैटर्जी ने और हारमोनियम पर अरुधति भट्टाचार्य जी ने।
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। वी नाउ प्रेजेंट अ वोकल रिसाइटल बाय विदुषी सुमित्रा गुहा। शी इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय प्रसून चैटर्जी एंड ऑन द हारमोनियम बाय अरुधति भट्टाचार्य जी। शी फर्स्ट प्रेजेंट्स राग कलावती इन विच शी सिंग्स द विलंबित ख्याल सेट टू एक ताल। लिरिक्स ऑफ दिस ख्याल आर श्याम नाही घर आए। दिस विल बी फॉलोड बाय द द्रुत ख्याल सेट टू एक ताल। द लिरिक्स ऑफ द्रुत ख्याल आर कान्हा रे गिरधारी।

0: अभी आप विदुषी सुमित्रा गुहा का गाया राग कलावती सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चैटर्जी ने और हारमोनियम पर अनुधति भट्टाचार्य जी ने। और लीजिए अब सुनिए राग देश। मध्य लय और द्रुत ख्याल अध्याताल और तीन ताल में निबद्ध है। बोल हैं चलो कोकिला मधुमास आया और द्रुत ख्याल एक ताल में निबद्ध है। बोल हैं बीत जात बरखा ऋतु। तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चैटर्जी ने और हारमोनियम पर अरुधति आचार्य जी ने।
1: यू वर लिस्निंग टू राग कलावती प्रेजेंटेड बाय विदुषी सुमित्रा गुहा। कंटिन्यूइंग विद हर वोकल रिसाइटल, विदुषी सुमित्रा गुहा नाउ प्रेजेंट्स राग देश, इन विच शी फर्स्ट प्रेजेंट्स मध्यलय एंड द्रुत ख्याल सेट टू अद्धाताल एंड तीन ताल। द लिरिक्स आर चलो किला मधुमास आया। दिस विल बी फॉलोड बाय द द्रुत ख्याल सेट टू एक ताल। The lyrics of this Drut Khayal are Beet Jat Barha Ritu.

0: अभी आप विदुषी सुमित्रा गुहा गाया राग देश सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चैटर्जी ने और हारमोनियम पर अरुधति भट्टाचार्य जी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: You had been listening to a vocal recital presented by Vidushi Sumitra Guha. She was accompanied on the tabla by Shri Prasoon Chatterjee and on the harmonium by Shrimati Arudhati Bhattacharjee. This program was a presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित दिनकर कैकिनी का गायन. राग है सावणी केदार. विलंबित रचना तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं तुम हो प्रवीण. द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, इसके बोल हैं सोलह हो सिंगार किए सखी सजनी. In the program of Indian classical music, we present a vocal recital by Pandit Dinkar Kakani. Rag is Savani Kedar. Vilambit composition is set to Tilwada Tal and Drut composition in Teen Tal.

0: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: ये था पंडित दिनकर कैकिनी का गाया राग सावणी केदार। आपके साथ तबले पर संगत की पंडित राजेंद्र अंतरकर ने और हारमोनियम पर अनंत केमकर ने। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं पंडित दिनकर कैकिनी का गाया राग पूर्वी कल्याण। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं मिलन भयो है। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, इसके बोल हैं धन धन भाग जागे।
0: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
1: दैट वॉज राग सावनी केदार बाय पंडित दिनकर कैकिनी। ही वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय पंडित राजेंद्र अंतरकर एंड ऑन द हारमोनियम बाय अनंत केमकर। एंड नाउ वी प्रेजेंट राग पूर्वी कल्याण बाय पंडित दिनकर कैकिनी। विलंबित एंड द्रुत कॉम्पोजिशंस आर सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित दिनकर कैकिणी का गायन। आपके साथ तबले पर संगत की दीपक नेरुरकर ने और हारमोनियम पर बबन मांजरेकर ने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी।
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: यू वर लिसनिंग टू अ क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय पंडित दिनकर कैकिणी। ही वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय दीपक नेरुरकर एंड ऑन द हारमोनियम बाय बबन मांजरेकर। This was a presentation of All India Radio, Mumbai.
1: This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बिहाग में सरोद वादन. आज के कलाकार हैं सुनंदो मुखोपाध्याय. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय. सरोद पर राग बिहाग, कलाकार सुनंदो मुखोपाध्याय.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. लिसन टू अ सरोद रिसाइटल इन राग बिहाग. Our artist this evening, Sunanda Mukhopadhyay, accompanying on the tabla, Tarun Roy. Now, listen to a sarod recital in Rag Behag by Sunanda Mukhopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बिहाग में सरोदवादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे सुनंदो मुखोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 2400 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You are listening to a Sarod recital in Rag Behag by Sunanda Mukhopadhyay, accompanying on the tabla Tarun Roy. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam, 24/7 anytime Indian music.

0: वायलिन पै श्री द्वारं सत्यनारायण राव मृदंगं पै श्री नेमानी सोमयाजुलु कार्यक्रमंलो मुंदुगा विनंडि स्मरणं वंदे मलयमारुत रागं आदितालं पुरंदरदास कीर्तन
1: लिसन टू अ कर्नाटक वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती एम सेशमणि शी इज अकंपनीड ऑन वायलिन बाय श्री द्वारं सत्यनारायण राव ऑन मृदंगं बाय श्री नेमानी सोमयाजुलु श्रीमती सेशमणि बिगिन्स हर वोकल रिसाइटल विद अ कंपोजिशन ऑफ पुरंदरदास स्मरणं वंदे इन राग मलयमारुतम set to Adital
2: smarane vonde salade

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं श्यामलाल और साथी का शहनाई पर बजाया राग आभोगी। विलंबित गत एक ताल में एवं द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है।
2: दिस इज रागम। टुडे इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट यू शहनाई रिसाइटल बाय श्यामलाल एंड पार्टी। रिसाइटल इज इन राग आभोगी। विलंबित गत इज इन एक ताल एंड द्रुत गत इज इन तीन ताल।

0: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। ये था शहनाई पर बजाया राग आभोगी। कलाकार थे श्यामलाल वसाथी। और आइए अब सुनते हैं उस्ताद अली हुसैन वसाथी का शहनाई पर बजाया राग बागेश्री।
1: दिस इज रागम 24/7 डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू वर लिसनिंग टू शहनाई रिसाइटल इन राग आभोगी recited by Shyam Lal and Party. We now present Shehnai recital by Ustad Ali Hussain and Party in Raag Bageshri.

0: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अली हुसैन व साथी का शहनाई पर बजाया राग बागेश्री। रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत के अंतर्गत आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।
1: यू वर लिसनिंग टू शहनाई रिसाइटल बाय उस्ताद अली हुसैन एंड पार्टी इन राग बागेश्री। रागम 24/7 DTH anytime Indian music. This program was the contribution of All India Radio Lucknow.

Da ma da ma da ni ga.

ऐ रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में उपशास्त्रीय गायन। कलाकार हैं नैना देवी। आप सुनेंगे दादरा, बोल हैं गोरी बन के नैनों से चला जादुआ। संगत कलाकार हैं तबले पर इस्माइल दद्दू खां और सारंगी पर सरदार खां। ये रिकॉर्ड वर्ष 1980 में की गई थी। दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल। नाउ लिसन टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय नैना देवी। द रेंडिशन कमेंसेस विद अ दादरा। द अकॉम्पनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला एंड सरदार खां ऑन द सारंगी। दिस वॉज रिकॉर्डेड इन द ईयर 1980.

अगली प्रस्तुति है कजरी, बोल धीरे धीरे से झुलाओ सुकुमारी सिया हो। द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज कजरी।

आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय गायन, कलाकार हैं नैना देवी। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय नैना देवी। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे ठुमरी भैरवी। बोल हैं हंस हंस गरबा लगाए। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स ठुमरी भैरवी।

देवी संगत कलाकार थे। प्ले पर इस्माइल दद्दू खां और सारंगी पर सरदार खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू विल लिसन टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय नैना देवी। द कंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला एंड सरदार खां ऑन द सारंगी। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है। प्रस्तुत है वरुण कुमार पाल का हवाइन गिटार पर बजाया राग नट भैरव। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली ने।
2: This is a Ragam channel of All India Radio. We now present Hawaiian guitar recital by Varun Kumar Pal. First listen to rag Nad Bhairav. The alap is followed by Vilambit Gat and Drut Gat is set to Teen Tal. He is accompanied by Nawab Ali on tabla.

0: अभी आप वरुण कुमार पाल का हवाइन गिटार पर बजाया राग नट भैरव सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए बैरागी में आलाप। मध्यलय और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू हवाइन गिटार रेसाइटल इन राग नट भैरव बाय वरुण कुमार पाल। नाउ लिसन टू राग बैरागी। द आलाप इज फॉलोड बाय मध्यलय गत एंड द्रुतगत इज सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप वरुण कुमार पाल का हवाईन गिटार पर बजाया राग बैरागी सुन रहे थे। तबले पर आपकी स्मृति की थी नवाब अली ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू हवाईन गिटार रिसाइटल इन राग बैरागी बाय वरुण कुमार पाल। ही वाज अकंपनीड बाय नवाब अली ऑन तबला। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भक्ति संगीत के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रतिभानुजी देशपांडे की इस भक्ति रचना से, जिसे गाया है अनुराधा मराठे ने।

अनुराधा मराठे ने गाई प्रतिभानुजी देशपांडे की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं दीपक पाटेकर के स्वर में समर्थ रामदास की ये भक्ति रचना।

समर्थ रामदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी दीपक पाटेकर के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं वैभवी शेटे के स्वर में संत ज्ञानेश्वर महाराज की ये भक्ति रचना।

अभी आपने संत ज्ञानेश्वर महाराज की भक्ति रचना सुनी वैभवी शेटे के स्वर में। भक्ति संगीत के कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है संत चोखा मेळा की, जिसे गाया है उदय काळे ने।

उदय काले ने गई संत चोखा मेला की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत जनाबाई की भक्ति रचना सुमन मते के स्वर में।